0: के तारे पुरिया सब पवन, नाम के सब उधरे संसार बन।
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए।
0: रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।
1: करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समानी।
0: सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत।
1: सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली।
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई।
1: सत वचन साधु उपदेश, सत जन जाके हृदय प्रवेश।
0: सत नृत्य बुझै जे कोए, नाम जप तक कीगत होए।
1: आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत।
0: जिसकी शेष सुख करने हार, अवर न बूझ करत विचार।
1: करते की मितना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया।
0: बिस्मन बिस्म पै बिस्माद, जिन बुझया तिस आया।

0: ब्रह्म तमो कहां के सोभत परम
1: अपन खेल आवर्ती जा नानक करने हार न दूजा
0: जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी
1: जब एक के हर अगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार
0: जब निर्गुण पव सह सुभाए तब से शक्त को कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी ज्योतरे तब कवन डर कवन कत डर
0: अपन चलेत आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार
1: अविनाशी सुख अपने आसन जन्म को कहां बिनासन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कौ किस होए
1: जब अभिक्त गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ नंजन गोचर गल दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपने आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कौ क्या तोता
1: जय निरंजन निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लागत को कीस।

0: अष्टपदी
1: आपका कथया सुनने हार आपे एक विस्तार
0: जात पावत श्रेष्ठ पाए अपने पाने लय समाए
1: ते पिन नहीं कुछ होए अपन सूत सब जग परोए
0: जा को प्रभु जीव आप बजाए सच नाम सोई जन पाए।

0: पैर
1: ए लोक सुखिए परलोक से ले नानक हपव अपे मिले
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
1: राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार
0: अमृत वचन हर के गुण गावो प्राण तरण का ए सुहाओ
1: आठ पैप पिखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा।

0: आप छोट बेनती करो साध संग अगन सागर तरो
1: अतन के परले हो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार
0: हेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: किस चित भव नारायण एक एक रूप जाके रंग

अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बैर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गोर।

0: बात भी सुनी सो राखे, सुनिया भी है ते देखिया भी है कि वह करामात भी अपने पास रखते ने, वह करामात कामल हन।
1: लोक सकल गुर गुर तिस भाखै,
0: सारे लोग उन्होंने गुरु गुरु कहिंदे ने, गुरु गुरु करके उन्होंने सत्कार करते हैं।
1: दर्ब पंच छै रावर करती,
0: आप जी के घर विचों भी रोजाना उन्होंने वास्ते 500 रुपया जिहड़ा जाता है।
1: पहुंचत नित आनंद।

0: पहली बारी
1: हैं,
0: पहली बारी रखी इधर।
1: अच्छा, तो आप ही धरते हैं?
0: ये सर
1: आप ही धरते हैं? हाँ,
0: मेरे नाल बड़ा कंप्रोमाइज किया इन्होंने।

मरे पुरख जो उनको परे दहारे तन के तो संकट सटारे जो काल को गुबारते हैं तांगे काल न्याय रशाव इतने सब काला दोस्त अरेस्ट त्रे तत्काला।

जाय न जाय। सहसा कथा संजम रहे कर्म कमाए, सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मान तो हो शब्द लाग हो, हारस्यो रहो चित लाए। कहा नानक गुर प्रसादी सहज उपजा, ये सहसा इव जाय। जियो मैले बारो निर्मल, बारहो निर्मल जियोता मैले। तिनी जन्म जुआ हारिया, ये तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनो वे सारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनहे नाही। फिर जो बितालिया, कहा नानक जिन सच तजिया। कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुते कनी कमानी, कूड़ की सोय पहुँचा नाही। मनसा सास मान जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारी। कहा नानक जिन मन निर्मल सदा रहा गुरनाले। जे को सिख गुरु सेती सानमुख होवा, होवा ता सानमुख सिख कोई। जियो रहा गुरनाले, गुर के चरण हृदय ध्याए। अंतर आत्मा संभाले, आप छाड़ सदा रहा परना। गुर बिन अवर न जाना कोई, का नान सुनहु संतो। सो सिख सानमुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै। बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावा मुक्त ना होर था कोई। पुछो हो बिकिया जाए, अनेक जूनी भरमे आवै। बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरनी। सतगुरु शब्द

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।